0: रेडियो हिमशिखर 103.3 मेगाहर्ज।
1: यस खबर परिक्रमाका साथमा इलेक्ट्रिक स्कूटर तथा इलेक्ट्रिक साइकल सुपथ मूल्यमा पाइने सोरुम दमक इन्टरप्राइजेस गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि। फोन नम्बर 9816091013।
2: मिठो मिठो मामा तयारी छ।
3: मामाईसँग हल्का जमा।

धुमधाम कति धुमधाम राई सपन नयाँ इबी मेरो टियागो इबीसँग लाइट छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's

धुन धाम राइट सपन नया इदी मेरो दियागो इदी संग लाइट सुपर फन एल्डर्स लव इट सो डू द यंग इट्स सेफ

0: अनि बढी साइकल लिएर गयो।
1: साइकल लिएर जाँदा जमाना उहाँ मोटरसाइकलमा पुगिसकेछ। एउटा मोटरसाइकल किन्देऊ, बुहारी ल्याएर देखाइदिउला।
0: किन्देऊला।